हर कृष्ण दिल सदा कुवारी जाको तो का कहां व्याप है जाको ओट तुम्हारी रहो इन सिमरन जो जीवन बना सब जैसे अर्जारी जब खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी।

मोह निर्गुण सब गुण तेरे, हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखाही, माया मोह परम पै भूले, सुतता रास्यो प्रीत लगाई, एक उत्तम

पातशाह हो सिरंदा सच्चे तख्त निवास है साध संगत सच खंड वसंदा सच फुरमान निशान सच सच्चा हुक्म ना मूल फिरंदा सच शब्द टकसाल सच गुर